0: This is East FM 102.7.
1: कैनेडा सरकार जमानत अते सजा दे कानूनां विच सख्ती ल्या रही है। हिंसक अते बार-बार अपराध करन वालियां नूं भाईचारे तों दूर रखण लई सिस्टम विच सुधार तां जो तुसीं घर विच सुरक्षित रहो। canada.ca/surakhit-canada ते होर जानो। कैनेडा सरकार वल्लों इक सुनेहा।
2: Your radio, your music, FM 102.7 East.

0: This is your favorite radio station, East FM 102.7.
1: Super, super, and go!
2: New era, new beginning. This is RK.
0: You're listening to East FM 102.7.
1: Super, super, and go!
3: कनाडा सरकार सरहदी सुरक्षा लई सख्त कदम चुक रही है। ड्रग्स अते बंदूकां दी तस्करी नूं रोकिया जा रहा है, जिस नाल तुसी भाईचारे विच सुरक्षित रहो। canada.ca/surakhit-canada ते होर जानो। कनाडा सरकार वल्लों इक सुनेहा।
4: Your radio, your music, FM 102.7.